0: मुझे मत रोको, दिल लेके देखो, मुझे मत रोको, मुझे पिला हो, मुझे पिला हो, मुझे पिला हो या कप्पो,
1: दिल लेके देखो, दिल लेके रोको, दिल लेके देखो, मुझे मत रोको, मुझे पिला हो, मुझे पिला हो, मुझे पिला हो या कप्पो,
0: मिली नजर से नजर
2: पाहुणा
0: लाजला बर तुम्ही बाईचा खबर तरी प्रीतेचा बरं जरा करतो सबर रा